ठहकर जो लेते हैं तो उजरत की तरह, हम तेही दामन सही खैरात पर जिंदा रहूं।

0: हम इधर जिंदा नहीं और वो उधर
1: छाती का कैंसर हांगकांग में खवातीन में सबसे आम कैंसर है। हर औरत को अपनी छातियों की आम शक्ल सूरत से वाकिफ होना चाहिए और हर वक्त छाती से

आगाह रहना चाहिए। रोजाना की सरगर्मियों के दौरान में छाती की किसी भी गैर मामूली तब्दीली से चौकन्न रहें, जैसे छाती की गुठली, छाती के साइज या शक्ल में तब्दीली, निबल का हट जाना या जिल्द की साख्त में तब्दीली। अगर आपको कोई गैर मामूली तब्दीली नजर आती है तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। छाती के कैंसर का जल्द पता लगाना आपकी जिंदगी बचा सकता है। छाती के कैंसर से बचने के लिए आप सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपना सकते हैं, जैसे कि बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी, सेहतमंद जिस्मानी वजन और कमर के नाप को बरकरार रखना और शराब नोशी से परहेज करना। मजीद मालूमात के लिए देखिए www.cancer.gov.hk/breastcancer। प्रोग्राम के आखिर में एक पश्तो गीत रूना लैला और दीना लैला की आवाजों में। हांगकांग की शाम आप सुन रहे हैं RTHK रेडियो 3 पर होम अफेयर डिपार्टमेंट हांगकांग के ताबुन से। ये महफिल सजती है हर इतवार की शाम 8 बजे की खबरों के फौरन बाद। आप हमारी नशरियात इंटरनेट पर लाइव या गुज़िश्ता एक साल के प्रोग्राम आर्काइव में भी सुन सकते हैं। विजिट कीजिए RTHK रेडियो 3 की वेबसाइट। आज की इस महफिल से आइंदा इतवार तक के लिए अपने मेज़बान आबिद अली बेग को इजाज़त दीजिए। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। शब्बा खैर और अल्लाह।